0: हम किसी से कम नहीं।
1: हमें किसी का डर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। एक एक मिल ग्यारह होते, एक एक मिल ग्यारह होते, हम सब बड़े दिलेर हैं, हम सब बड़े दिलेर हैं। हम किसी से कम नहीं, हमें किसी का डर नहीं। एक एक मिल ग्यारह होते, हम सब बड़े दिलेर हैं।
0: हम किसी से कम नहीं, हमें किसी का डर नहीं। एक एक मिल ग्यारह होते, हम सब बड़े दिलेर हैं।
2: सर इदुदा इरंडावदे सरणम। इदुक्कु अप्पुरम पल्लविये पाडणम।
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
2: என்ன எழுதி முடிச்சிட்டீங்களா? இப்ப மூன்றாவது சரணம்.
1: ஜீவன் சரஸ் பனாயங்கே, ஜீவன் சரஸ் பனாயங்கே, தன் தானிய உப்ஜாயங்கே, தன் தானிய உப்ஜாயங்கே, கோயி மானவ் दुखी रहे ना, कोई मानव दुखी ऐसी सबकी टेर है। जीवन सरस बनाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे, कोई मानव दुखी रहे ना, ऐसी सबकी टेर है।
2: इधर मूंढ़ावड़ चरण, इधर कप्रां मरवड़े पल्लवी वरों।
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
2: सरी இப்ப சரணங்களை சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
1: हम एक हैं,
0: हम एक हैं,
1: हम एक थे,
0: हम एक थे,
1: हम एक रहेंगे,
0: हम एक रहेंगे।
1: मिलकर कदम बढ़ाएंगे,
0: मिलकर कदम बढ़ाएंगे,
1: आगे बढ़ते जाएंगे,
0: आगे बढ़ते जाएंगे।
1: हमको रोक सके ना कोई,
0: हमको रोक सके ना कोई।
1: हम वायु का वेग हैं,
0: हम वायु का वेग हैं,
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
1: हम किसी से कम नहीं,
0: हम किसी से कम नहीं,
1: हमें किसी का डर नहीं,
0: हमें किसी का डर नहीं।
1: एक एक मिल ग्यारह होते,
0: एक एक मिल ग्यारह होते,
1: हम सब बड़े दिलेर हैं,
0: हम सब बड़े दिलेर हैं।
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
1: जीवन सरस बनाएंगे,
0: जीवन सरस बनाएंगे,
1: धन धान्य उपजाएंगे,
0: धन धान्य उपजाएंगे,
1: कोई मानव दुखी रहे ना,
0: कोई मानव दुखी रहे ना,
1: ऐसी सबकी टेर है,
0: ऐसी सबकी टेर है।
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
2: பாட்டு எழுதிட்டீங்களா? இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாமா? இது சதுஸ்ர நடையில அமைஞ்சிருக்கு.